0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

गोसक तथा गायक मोहन तमाङ डान्सर तथा मोडल विमला थामी मुख्य सहयोगी गडुल थामी कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी श्री सेतीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति भीमेश्वर नगरपालिका नौ

0: मजुरा सांदल के बनमा नाचने छन मजुरा।
1: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं।

0: मौका यही हो।
1: बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाऊ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
2: यो रेडियो सैलुङ को समय सूचक हो। यति बेला साँझको छ बजेको छ।

0: अनुरोधक जीव जनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो शैलव सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म बति प्रसाद साहबकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुन 16 तारीख आषाढ 2 गते मंगलबार परेवा 3:54 मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरे।